0: कुछ तो बोलो बोलो बोलो हे बोलो हे बोलो कुछ तो बोलो।
1: सुनिए कुमार बेतलिया।

0: Cómo jugar en Betolina.
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।